0: 48 और 47 25
1: सहारा डेयरी यानी फिर सब लेने किसान को दूध किसान का ही भरोसा।
2: नमस्कार, मैं रामकुमार मेघवाल और संपूर्ण सेवा कराने वालों का शुभ स्वास्थ्य तथा निर्माण को

हमें तो नहीं देखते तो क्यों तो लगा देखने के लिए नहीं देखते नहीं देखते

0: सुनो माना भाई ते पल के पास सुनो
1: पाल के पास ही सुनो मनाई
0: भारत धर्म पाप छाई।

0: पछि अनि बारिश रुकाउनु अनुमा केटाकेटी साग सब्जी अन्तरिसले कसिलो कुरा खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ कुरा खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी राखौँ।
1: रेडियो पूर्वाधार एफएमद्वारा सामाजिक जारी सन्देश
2: रास्ते

जय गुरु बाबा। आज 5 बजे मौसम बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुम्बे चौधरी। वर्तमान आज बिहान स्थिति खबर नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आज रात को पर्द्या में कई ठाव बटे लगना हो एक दो ठाव छिटफुट

चुनावों से आकर मुंबई था 19 तो विपद का घटना घटल बा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार दुर्घटनाओं बाढ़ जन खरीदी बाट असम का बैंक खजुरा गांव पालिका रचनापुर में गाड़ी में घास घटना क्रम में एक जना 22 वर्षीय पुरुष सहन नौ मुख्य लोक संपर्क दशहरा संपर्क घायल हुई

0: मेरा मैं अपने चल बेटा कुछ करेगा वो सब कुछ सब बिखरा के नहीं रहता
1: बिखरा हो कि नहीं होता तो कहते इंडिया का नहीं
0: मैं पहले पाए बिखरा था तो कभी से मैं

0: साधन को कसाई अधिकार नहीं रखा उसके एक सत्ता दर्जा तुरंत लक्ष्य उपचार केन्द्र में जा रहे
1: विश्वास लग्न और सही जानकारी पाइला को लघु उपचार केन्द्र करने पता लगा आधिकारिक रूप नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै बीपी पूर्णमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: 75 र 98 40 40 70 25
1: सहारा देने आने तीन सौ दिन किसान को दिन किसान के लिए भरोसा
2: कार्य

0: जय विधाता संध्या सभा छ बजे हमारा संदेश स्वागत बाया बिंदु संग्रह कुमार मैले गुरुबाबु एफएम बर्दिया से उत्पादित हमारा संदेश बर्दिया का साथी एफएम राजापुर से प्रसारण प्रसारण पीटिका हमार संदेश दुरीदारी मुख्य मुख्य समाचार प्रश शीर्षक से साना किसान कृषि सरकारी स्वास्थ्य पारस्परिक फार्म आदर्श वाणिज्य सिंचाई करोजिंगे बाली नष्ट कर लक्ष्मीता धार पर खुलासो बर्दिया का पालिका मसे करदाता सेवा संचालन करना खसुरा और संरक्षण गृह का बाल बालिका पर शैक्षिक खाद्य न हो खेलकूद का सामग्री वितरण और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि राजा ने कांग्रेस का मजा वो कमजोरी अलग विषय के बाद पूरा समाचार
1: किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड का 13 करोड़ 82 धारक कारोबार कर रहा संस्था का संचालक 18 वार्षिक सारण सभा में आर्थिक वर्ष का विवरण सार्वजनिक करते कुल कारोबार 13 करोड़ 75 लाख 33,784 रूपया भुगतान करवा था। राजगढ़ नगर पालिका 5 नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय सदन सभा आयोजन संस्था के उपाध्यक्ष निरुता बुढ़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम राजगढ़ नगर पालिका के नगर प्रमुख खड़ग बहादुर खड़का जनस्तरीय सहकारी संचार अध्यक्ष देवी शरा जैसी जिला कृषि सहकारी संस्था का अध्यक्ष हरि बहादुर अधिकारी डौरकुमार सारा किसान कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष परिराम थारू लेखा सुपरिवेक्षक समिति सदस्य तथा सहकारी संचार का प्रतिनिधि संस्था का संचालक समिति कर्मचारी तथा शेष सदस्य सहित 500 का सहभागिता रहा। संस्था में हाल 1,143 जना शेष सदस्य संस्था का कुल शेयर पूंजी 13,62,33,000 रूपया हो। संस्था का कुल ऋण लगानी 11,41,51,831 रूपया ऋण लगानी लक्ष्य।

0: उपचार केन्द्र में जाने पर
1: विश्वास नगरों सही जानकारी पाई लाख नगर उपचार केन्द्र कर्णबाग एक सौ पचास लाख आधिकारिक नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती है। स्वास्थ्य

संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव का मुक्त